नमस्कार, सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की भद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजकर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान

0: दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है नए बागों की स्थापना एवं प्रबंधन, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें नए बागों की स्थापना और प्रबंधन की। बागवानी एक दीर्घकालीन निवेश है, इसलिए एक फलदार बगीचे की स्थापना और प्रबंधन बहुत ही सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अधिकतम पैदावार और ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित करने के लिए बगीचे के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, सही रोपण प्रणाली, उचित रोपण दूरी, पौधों की अच्छी किस्मों का निर्धारण, नर्सरी से स्वस्थ पौधों का चुनाव, पौधों की देखभाल, फसल की बाजार व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। किसान भाइयों, एक अच्छा बागीचा लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पाला कम पड़े और जो प्राकृतिक विपदाओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित हो। स्थान ऐसा हो जहां आसानी से पहुंचा जा सके। सभी तरह की मिट्टी में फल पौधे नहीं लगाए जा सकते, इसलिए फल पौधों की सही बढ़ोतरी, अधिक और गुणवत्तापूर्ण फल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक जरूरी है। मिट्टी रेतीली दोमट से बालू दोमट और उपजाऊ होनी चाहिए। ग्रामीण भाइयों, बागीचे की रूपरेखा बनाने से पहले उस क्षेत्र की मिट्टी की जांच करवाकर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए। भूमि की भीतरी सतह पथरीली ना हो, उसमें अधिक कंकर पत्थर ना हो और ना ही उसमें अधिक जल खड़ा होता हो। जमीन की भीतरी सतह तक खुदाई आवश्यक है ताकि पथरीली सतह को हटाया जा सके। जमीन के अंदर पथरीली सतह जड़ों के बढ़ने और फैलने में बाधा पैदा करती है। जी हाँ किसान भाइयों, बागीचा ऐसी व्यवस्था और अनुमोदित विधि द्वारा लगाया जाना चाहिए जिससे पौधे का पूर्ण विकास हो और उत्पादन क्षमता बढ़ सके। समतल और घाटियों वाले क्षेत्र में वर्गाकार, षटकोण, आयताकार या किसी दूसरी विधि से पौधे लगाए जा सकते हैं। ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि से पेड़ लगाना उत्तम है। किसी भी विधि से बागीचा लगाते समय यह विशेष ध्यान रहे कि आयु के साथ पेड़ों को फैलने के लिए उचित स्थान, प्रकाश और वायु मिले और पौधों की शाखाएं आपस में ना उलझें। ग्रामीण भाइयों, पौधे स्वस्थ तथा रोग रहित होने चाहिए, इसके लिए पंजीकृत पौधशालाओं और विश्वस्त स्रोतों से ही पौधे खरीदें। कलम का जोड़ भूमि से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ग्रामीण भाइयों, गड्ढा पौधा लगाने से एक महीना पहले तैयार कर लें ताकि मिट्टी में मिले उर्वरक और खाद पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और मिट्टी अपने स्थान पर ठीक से बैठ जाए। जड़ों के विकास के लिए गड्ढे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और फल

0: की किस्म देखकर विभिन्न आकार और गहराई के बनाए जाते हैं। यदि क्षेत्र की मिट्टी पथरीली हो और मिट्टी की गहराई कम हो तो गड्ढे का आकार बढ़ा लें और जंगल की ऊपरी सतह से मिट्टी लेकर गड्ढे में भरें। पौधों को गड्ढों के ठीक मध्य में अर्थात उतनी ही ऊंचाई पर लगाएं जितना कि वह पौधशाला में था। पौध रोपण के पश्चात इसके आसपास की मिट्टी को पैरों से दबा दें ताकि मिट्टी पौधे की जड़ों के साथ ठीक से बैठ जाए। पौधा लगाने के पश्चात हल्की ऊंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, छोटे पौधों को सहारा देने के लिए इस तरह से सहारा लगाएं ताकि जड़ों को क्षति ना पहुंचे और उन्हें तने के साथ बांध दें, परंतु जैसे ही इनकी आवश्यकता ना हो इन्हें निकाल दें। खरपतवार का समय समय पर नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल ग्रामीण भाइयों, इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। बरसात में मल्च को हटा दें। पौधा लगाते समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। फल की बढ़ोतरी के समय और फूल आने पर, चाहे फल उगाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती भी हो, फिर भी संभव हो सके तो सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें नए बागों की स्थापना और प्रबंधन की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था नए बागों की स्थापना एवं प्रबंधन। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की, फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। आलेख एवं वाचन निर्मला।

सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत। कोई भी महान काम एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और जब तक सफलता ना मिले तब तक थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करके बड़े काम को कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, सकारात्मक सोच का होना, यह सफलता की ओर हमें ले जाता है। कई बार हम असफलता से निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। असफलता मिलने के बाद हमें उससे सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और पुनः नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलताएं पाई, लेकिन जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनके जीवन की ओर झांकते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कठिन संघर्ष किया तब जाकर उन्हें सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के दौर में लोग बहुत ही छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रयास करने से डरते हैं और छोटा रास्ता अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोड़ी पल के लिए आप किसी कार्य में सफल हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में ठहराव नहीं आ पाएगा, वो ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसलिए जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। सफलता का स्वाद तभी मिलेगा जब आप तपेंगे, संघर्ष के दौर से गुजरेंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि सफलता कितनी अच्छी चीज है। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें, कभी भी निराश ना हो, आशा का दामन ना छोड़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता की कुंजी है कठिन मेहनत, संघर्ष, और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उस काम को अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो चाहते थे वहां तक पहुंच जाना, इसलिए वो पहुंचे। और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए, बार बार गिरे,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है अस्थमा कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर अत्रे गंगोपाध्याय।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रे गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं ना थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
2: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के

0: बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
0: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुंचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपकी इन्हेलर हट सकती है या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर ख़त्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है। कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है, तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर

0: बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता, विषय था अस्थमा कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर अत्रे गंगोपाध्याय। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोफ के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है।

भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम एफआईएच हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: semiconductors, clean energy and steel, to automotive, financial services, healthcare and startups. Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson Ibrahim Rezai stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. In chess, India's 19-year-old grandmaster Pranesh M emerged as the champion in the prestigious Kanizsa Open 2026 in Nagya Kikinska, Hungary, securing the Group A title with a superb performance. In cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 300 for 5 against host Sri Lanka in the second and final test in Colombo today. Earlier, Dhruv Jurel and Saransh Jain remained unbeaten when stumps were drawn yesterday evening. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए शेष बचे हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अभी से थोड़ी देर के बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज़ में लोकगीत। 7:45 पर समय होगा गीतों गजलों के कार्यक्रम स्वर सरिता का, जिसमें आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गज़लें। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे हमारे राज्य केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपके लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। कार्यक्रम होगा उजाले उनकी यादों के। 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर सेहतनामा विविध भारती का कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

विस्तार होगा। हमारे रांची केंद्र से 6:02 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों का खेती बाड़ी, 6:30 पर कृषकों को संबंधित कार्यक्रमों का ग्रामीण श्रोता, 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से, 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे, 7:45 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कल्याणी आप सुनेंगे, 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से, 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 10:00 फिल्मी गीतों का हमारा नियमित कार्यक्रम होगा रजनीगंधा, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज में चंद लोकगीत।
1: जगत जन मेरा रे जय जय जय जय सरस्वती।

de ine hune malaki mare uche yali sandal pinde

0: अब सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
1: लाली लाली तारंगे, लाली लाली तारंगे, कुसुमिता सारी भाई बसिया के ललकारी। बसिए सब दह दे।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेला का आंधी धुका, आ गेलक पथल पानी, आ गेलक आंधी धुका, आ गेलक।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम बलाश। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज़ में चंद लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार थे जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही सहयोग को मजबूत

0: करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा,

0: आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय

0: सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन कंट्री स्पेस सेक्टर टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट अट्रैक्ट्स ग्लोबल स्पेस टैलेंट टू इंडिया। Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
3: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of the cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है और वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। रांची के एसएसपी ने समीक्षा बैठक कर थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद और अपराध पर लगाम के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने पर दिया जोर। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज सुबह से ही देवघर बाबा मंदिर, बाबा बासुकीनाथ मंदिर, रांची पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। और हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीमें शामिल होंगी। महोत्सव में 50,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में कहा कि सरकार को छात्रों की बातें सुनकर समस्या का समाधान करना चाहिए। बोकारो में कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडा ने छात्रों पर लाठीचार्ज और मुकदमे को गलत बताया।
1: स्वाभाविक रूप से छात्रों का गुस्सा है, वो मुखर होकर के अपने बातों को कह रहे हैं। उनकी बातों को, उनकी भाषा को समझना चाहिए, बजाय इसके पुलिस बल और मुकदमेबाजी करके छात्रों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका स्थायी समाधान कैसे निकले, इन सारे चीजों पर राज्य सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए।
0: जेपीएससी सीजीएल विवाद को लेकर झामुमो विधायक और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने छात्र आंदोलन को भाजपा और उसके आनुषांगिक संगठनों द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 22 नियुक्तियों पर रोक लगाई है और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
2: इसको हम छात्रों का आंदोलन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये आंदोलन अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हो गया। सब छात्र ग्रुप अब अलग थलग हो गया और ये काम उन्हीं का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी कि पहले ये तोड़ मड़ोड़ दो, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चलाना है।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 स्वाइन फ्लू के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी ने थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद, पुलिस पब्लिक संबंध मजबूत करने और अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार, एनडीपीएस, चोरी और पोक्सो जैसे मामलों में विशेष अभियान चलाने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और रात्रि गश्ती को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। एसएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन तत्परता और जवाबदेही के साथ करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज

0: आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम से लेकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बोलबम बोलबम हर हर महादेव।
2: झारखंड के प्रमुख शिवालयों में आज सुबह की पहली किरण के साथ ही आस्था का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। उपराजधानी दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं के संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन की अंतिम सोमवारी पर सुगम और सुरक्षित जलाभिषेक सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में पुलिस बल की तैनाती की गई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बोलबम बोलबम हर हर महादेव।
0: रामगढ़ जिले की पुलिस ने अवैध गांजा की खरीद बिक्री करने वाले दो आरोपियों रितेश कुमार और पुरुषोत्तम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लगभग 22 किलो गांजा और चार पहिया दो वाहन बरामद किए गए हैं। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कल गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इसमें एक दर्जन से अधिक खेलों में 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को वे आगे बढ़ा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सांसद खेल महोत्सव, और वो सांसद खेल महोत्सव को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल उसकी इन्होंने भरसक ये प्रयास किया है युवाओं के बीच उसको ले जाने के, ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके। युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति प्रेम है, प्यार है और बढ़े।
0: वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि इस साल 1,500 से अधिक फुटबॉल टीम नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वे नशा और अपराध की दुनिया से दूर रहते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी परीक्षा में कोचिंग सेंटर था सेटिंग का केंद्र, सीआईडी को मिले लेन देन के साक्ष्य। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची और हजारीबाग में छापे कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। प्रभात खबर ने पेंडिंग म्यूटेशन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, म्यूटेशन के 65,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग। दैनिक जागरण ने प्याज की बढ़ती कीमतों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, प्याज भी चला चीनी की चाल। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है और वर्तमान टीके बने हुए हैं प्रभावी। रांची के SSP ने समीक्षा बैठक कर थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद और अपराध पर लगाम के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने पर दिया जोर। सावन की अंतिम सोमवारी पर आज सुबह से

ही देवघर बाबा मंदिर, बाबा बासुकीनाथ मंदिर, रांची पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की जुटी है भीड़। और हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीमें होंगी शामिल। महोत्सव में शामिल होंगे 50,000 से अधिक खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वेव 546 दशमलव 45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है हीरो, आवाज़ रेशमा की है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म राम लखन ने लखन में। हम अगला गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म है सौतन की बेटी, आवाज़ किशोर कुमार की और अनुराधा पौडवाल की है।

0: अब कौआ काटे या सांप डसे।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते आज के सुविचार से। परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार और हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। जीवन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, हमारे जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। कभी लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो कभी हमारी आलोचना भी होती है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। मुश्किल समय हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए परेशानी आने पर घबराएं नहीं, उसके बजाय आप सोचिए कि आप इस परिस्थिति से क्या सीखते हैं और इससे उबरने के लिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो लगभग हर परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम। मोबाइल, टीवी, टैबलेट या कंप्यूटर आज हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, जानकारी और मनोरंजन के लिए तो इसका इस्तेमाल उपयोगी भी है, लेकिन जब बच्चा अपना बहुत सारा खाली समय स्क्रीन के सामने बिताने लगे, खेलना, पढ़ना, परिवार से बातचीत करना या दूसरी गतिविधियां करना कम हो जाए, तो माता पिता को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्क्रीन का स्पष्ट समय तय करें। सबसे पहले घर में एक सरल नियम बनाएं कि मोबाइल या टीवी कब और कितनी देर इस्तेमाल किया जाएगा। नियम बच्चे के साथ बातचीत करके तय करें और रोज लगभग एक जैसा रखें। अचानक मोबाइल छीन लेने पर के बजाय बच्चों को सबसे पहले बताएं कि स्क्रीन का समय कब समाप्त होगा। स्क्रीन का विकल्प दीजिए। केवल यह कहना कि मोबाइल मत चलाओ काफ़ी नहीं है। बच्चों को उसके बदले कुछ रोचक गतिविधियां भी देनी होंगी, जैसे कि घर से बाहर खेलना, साइकिल चलाना, किताब, कहानियों वाली किताब पढ़ना, चित्र बनाना, रंग भरना, पहेली और बोर्ड गेम खेलना, पौधों की देखभाल करना, संगीत या नृत्य सीखना, घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाना, परिवार के साथ बैठना। जब बच्चों के पास मनोरंजन और सीखने के दूसरे विकल्प होंगे तो स्क्रीन पर निर्भरता कम करना आसान होगा। माता पिता को खुद उदाहरण बनना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर माता पिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे और बच्चे से कहेंगे कि मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा उस नियम को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए घर में कुछ समय नो स्क्रीन फैमिली टाइम रखा जा सकता है। इस दौरान पूरा परिवार साथ बैठे, बातचीत करे, खेले, भोजन करे। और हाँ, भोजन के समय स्क्रीन बिल्कुल भी बंद। खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखने की जो आदत है वो धीरे धीरे खत्म करें। भोजन का समय परिवार के साथ बातचीत करके अच्छा अवसर हो सकता है। ये बच्चे से पूछे कि आज स्कूल में क्या हुआ, उसने क्या क्या सीखा, किस बात से उसे खुशी हुई। ऐसी बातचीत बच्चे की भावनात्मक रूप से परिवार के करीब लाती है। सोने के समय स्क्रीन को दूर करें। रात को सोने से पहले मोबाइल या दूसरी स्क्रीन देखने की आदत से बचना अच्छा रहता है। इसकी जगह कहानी सुनना, किताब पढ़ना, अगले दिन की तैयारी जैसे शांत गतिविधियाँ रखी जा सकती हैं। बच्चे के साथ समय बिताएं। कई बार बच्चा स्क्रीन इसलिए नहीं देखता कि उसे मोबाइल की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वह अकेला व बोर महसूस कर रहा है। माता पिता रोज़ थोड़ा समय बच्चे के साथ खेलें, उससे बातचीत करें, उसकी रुचियां समझें। बच्चे को आपका समय चाहिए, केवल आपका मोबाइल नहीं। पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन रखें। स्क्रीन का हर उपयोग गलत नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई, शैक्षणिक वीडियो और नई चीज़ें सीखने के लिए तकनीक उपयोगी हो सकती है, इसलिए बच्चे को

यह सिखाएं कि मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सीखने का माध्यम भी हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ खासा सावधानी बरतनी पड़ती है। छोटे बच्चों के मामले में माता पिता को स्क्रीन की सामग्री के समय दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्या देख रहा है यह भी कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि वह कितनी देर देख रहा है। उम्र के अनुसार उपयुक्त और सुरक्षित सामग्री चुनें और यहाँ मतलब अगर संभव हो तो बच्चे के साथ मिलकर देखें। एक आसान पारिवारिक नियम बनाएं। आप घर में एक छोटा सा नियम बना सकते हैं, पहले जरूरी काम फिर स्क्रीन, यानी पढ़ाई, खाना, पर्याप्त नींद, खेलना और परिवार के समय के साथ जैसी जरूरी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल अगर हम अपने बच्चे के साथ रखते हैं तो उसके स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है, उसकी आँखों को सुरक्षित किया जा सकता है, उसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओ, हम सभी हवा को महसूस करते हैं। गर्मी में चलने वाली हवा, ठंडी हवा हमें राहत देती है, पेड़ों की पत्तियां हिलाती है और मौसम के बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही चलती हुई हवा हमारे घरों और उद्योगों के लिए बिजली भी बना सकती है? जी हाँ, हवा में मौजूद गति की ऊर्जा को पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी कहते हैं। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए होता है। अब हवा में ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य जब पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो पृथ्वी की अलग अलग हिस्से अलग अलग मात्रा में गर्म होते हैं, इससे कि वायु दाब में अंतर पैदा होता है और हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। यही चलती हुई हवा अपने साथ गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी लेकर चलती है और हम इसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हवा से बिजली बनाने के इस्तेमाल में होता है। इसके लिए मुख्य रूप से पवन टर्बाइन यानी वाइन टर्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने खेतों या पहाड़ी इलाकों में बहुत ऊंचे खंभे पर बड़े बड़े पंखों जैसी संरचनाएं देखी होंगी। इन्हें देखकर लगता है कि ये केवल बड़े पंखे हैं, लेकिन वास्तव में ये हवा की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीनें हैं। इसमें बहुत सारी चरण से मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिससे गुजर करके विद्युत ऊर्जा बनता है। इसमें पहला चरण होता है कि हवा ब्लेड से टकराती है। पवन टर्बाइन के बड़े बड़े ब्लेड हवा के दबाव और गति के कारण घूमते हैं। ब्लेड घूमते हैं, उसके बाद ब्लेड घूमने वाले हिस्से यानी रोटर से जुड़े होते हैं। जब ब्लेड घूमते हैं तो रोटर भी घूमने लगता है। रोटर की घूमने वाली गति एक सॉफ्ट के माध्यम से जनरेटर तक पहुंचती है। कुछ आधुनिक टर्बाइन में गियर बॉक्स होता है, जबकि कुछ में सीधे जनरेटर से जुड़ी हुई प्रणाली होती है। यही सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जनरेटर घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रकार ऊर्जा का रूप बदलता है, हवा की गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसके बाद वाली बिजली को ट्रांसफार्मर और विद्युत ग्रिड की सहायता से आवश्यक स्थानों तक पहुँचाया

जाता है। एक सामान्य पवन टरबाइन में कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जिसमें ब्लेड हवा की ऊर्जा को पकड़ने के लिए, रोटर ब्लेड को घूमने से स्वयं भी घूमता है, शाफ्ट जो घूमने की ऊर्जा को आगे पहुंचाता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदलता है, टरबाइन को ऊंचाई पर स्थापित करता है ताकि बेहतर और अपेक्षित तेज हवा मिल सके, कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि टरबाइन को संचालन और सुरक्षा का नियंत्रण में रखा जा सके। पवन ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, घरेलू और इमारतों में बिजली आपूर्ति के लिए, उद्योगों में मशीन चलाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पानी पंप करने के लिए, दूर दराज के क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिए, बड़े विद्युत ग्रिड को बिजली देने के लिए। इसके अलावा छोटे स्तर पर भी पवन ऊर्जा का उपयोग कुछ विशेष स्थानों पर पानी पंप करने और स्थानीय बिजली जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है। पवन ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है क्योंकि हवा प्राकृतिक रूप से लगातार बनी रहती है। इसके कई फायदे हैं। यह जीवाश्म ईंधन की निर्भरता कम करने में मदद करेगी। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन है। पवन ऊर्जा इन पर निर्भरता कम करने में योगदान दे सकती है। ईंधन की जरूरत नहीं होती है। पवन टरबाइन को बिजली बनाने के लिए कोयले या पेट्रोल जैसे ईंधन को लगातार जलाना नहीं पड़ता है। परिचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। इसके कारण पवन ऊर्जा को कम कार्बन ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भूमि का दोहरा उपयोग संभव है। कई पवन परियोजनाओं में टरबाइन के आसपास की जमीन का कुछ हिस्सा कृषि और गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह परियोजना और स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। भारत में पवन ऊर्जा की काफ़ी संभावना है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में जहां वर्ष के कई बड़े हिस्से में पर्याप्त गति से हवा चलते रहती है, वहाँ पवन परियोजनाएँ स्थापित की जा सकती हैं। भारत के कई राज्य में बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र और पवन फार्म विकसित किए गए हैं। समुद्र के पास वाले क्षेत्र में ऑफशोर वाइंड एनर्जी की भी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अपनी ऊर्जा व्यवस्था के नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे। नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी राजा।

0: दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने
1: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल।

0: विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था।

0: हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बात

0: बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
0: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
2: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा

0: भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुलफाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
0: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ऐसी मूर्ति तो मैंने
6: वाओ वंडरफुल।
0: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
0: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
3: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
4: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे का कब।

0: अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले

0: नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमांचक नौवें दौर के बाद प्रणेश ने मध्य यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी ओपन टूर्नामेंटों में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली. पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है.
0: जी जी.
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा.
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है.
0: वाह वाह.
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं.
0: जी.
1: तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था. हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोन करके गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं. नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे.
0: वाह वाह वाह.
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है.
0: क्या बात.
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ. तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था. वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था. सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, दो दिन हफ्ते में दो दिन डांस कर रहे हो, दो दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, दो दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था. किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं. उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है. एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया. तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था. तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर. तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी. सौभाग्य से एक से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए. और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ. और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया. तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी. तो इस तरीके का माहौल था. आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो. और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता उस समय, एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का
0: जी.
1: वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे. पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे. तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा. देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी

0: इतनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरिटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर अच्छा। ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साइकिया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
1: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
0: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है,
1: वाह,
0: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
1: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
0: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
1: जी,
0: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ तीन साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो दो या तीन ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूं
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही, कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था, कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने

0: से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारिश, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची अदा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, तीन मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें तीन अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने दो या तीन फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने तीन ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो दो ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं
1: एक्स्ट्रा
0: है,
1: थे।
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
1: बहुत इंटेंस नाटक,
0: बहुत इंटेंस नाटक है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब कन्वीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट वर्चुअल ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह, उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है,

0: वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख लिया और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लिया आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा चेंज की।
0: मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस,
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहां एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएचडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्ट्री के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड

0: सोची चमक दमक दिख रही है
1: इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं छह देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बाप रे।
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी राजस्थान उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
0: जी,
1: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
0: हाँ,
1: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारधार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
0: जी,
1: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
0: हाँ,
1: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
0: अच्छा,
1: दैवम मतलब देव
0: जी,
1: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
0: जी जी जी,
1: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
0: देव
1: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
0: क्या अनुभूति है, वाह।
1: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
0: कि कौन है,
1: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्र कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है, उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
0: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
1: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: बत्तीस
1: रे।
0: बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां,
1: वाह,
0: जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए हैं,
1: आस्था है।
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है,
1: जी
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है। तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी।
0: अंदर, कितना जलता है किसको नहीं मालूम। वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहां कहां है। कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता है

0: ही नहीं था, ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: क्योंकि वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलॉसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलॉसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 100 बार कहा आंखों ने यही अफसाना, दिल जाने तमन्ना आपका है दीवाना। श्रोताओं, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गैर फिल्मी गीत के साथ। आवाजें हैं पीनाज मसानी और भूपेंद्र सिंह की, गीत है नक्श लायल पुरी का, संगीत है जयदेव का, एल्बम का नाम है आई तेरी याद।

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। कलाम है शायर डॉक्टर राही मासूम रजा का, आवाजें हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का और एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: तरंग।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अलीशा चिनॉय की आवाज में नितिन रायकवार का लिखा गैर फिल्मी पॉप गीत सुनिए। इसे सुरों में ढाला है संदीप चौटा ने।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत अमिताभ बच्चन और अदनान समी की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत तेरा चेहरा।

सौ खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। राजकुमार रिजवी और इंद्राणी रिजवी की आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं शायर बशीर बद्र की एक खूबसूरत गजल। संगीत है कमलकांत का।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं।

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल

0: काल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने, फिल्म का नाम है कोरा कागज।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि

0: दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कलाकार, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती।

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ

अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: as a collective whole-of-nation effort to take forward the BRICS agenda. He further noted that BRICS has grown from an idea into one of the major platforms for cooperation among emerging markets and developing countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The BJP leaders in Karnataka staged a protest and courted arrest, demanding the resignation of Minister B. Nagendra. The minister is accused in the Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation scam, where it is alleged that B. Nagendra diverted Dalit development funds of 187 crore rupees to the Congress party for fighting elections. The police arrested the BJP legislators from the assembly and council when they tried to march to the Vidhan Sabha, the state secretariat building. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh till tomorrow. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 258 points to 77,283, while the Nifty fell by 71 points to 24,181 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर दिशोम गुरु शिव सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज होगी यात्रा। अंतिम सोमवारी पर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, 3.5 लाख से अधिक भक्तों के जलाभिषेक का अनुमान। बासुकीनाथ में 4 किलोमीटर तक लगी कतार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। गढ़वा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब, झारखंड की टीम उप विजेता। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जब्त किए। सीआईडी टीम ने जांच में रांची के एक कोचिंग में मौजूद रिकॉर्ड खंगाले और निदेशक पर भी कार्रवाई कर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों के अनुसार हजारीबाग में दूसरे बड़े कोचिंग सेंटर में भी जांच की गई। जब्त सामग्री की जांच के बाद अब अभ्यर्थियों, कोचिंग नेटवर्क और परीक्षा से जुड़े डिजिटल तथा अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज और 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भाजपा खड़ी है और एफआईआर वापस नहीं होने पर छात्र डरे नहीं बल्कि जेल भरो आंदोलन करें।
2: पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को फाड़ देना।
1: जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था

0: की मांग को लेकर चल रहे अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज दिशोम गुरु शिवु सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से होगी। यह जानकारी आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दी। उन्होंने बताया कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकाया टांड से शुरू होकर झारखंड के सभी जिलों से होते हुए रांची पहुंचेगी। देवेंद्र नाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही।
1: आने वाले परीक्षाओं पर पेपर लीक ना हो, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा, इसका गारंटी चाहिए। ऐसा हम लोग को रिफॉर्म चाहिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को भी जोड़ा जाए। क्वेश्चन पेपर को जो कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना हो, कॉपी जांच करना हो, पूरी तरीके से गोपनीयता, पारदर्शिता का जो भी नियम है उसका पालन, और भविष्य में पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो आने वाले युग युग पर, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा किसी को लड़ना पड़े।
0: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मेस शुल्क बढ़ोत्तरी और भोजन के खराब गुणवत्ता के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना चर्चा के फीस बढ़ाई और गुणवत्ता में सुधार की बजाय गिरावट आई। छात्रों ने बढ़ी फीस तत्काल वापस लेने, मेन्यू तय करने में भागीदारी और वेंडर पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन वार्ता से समाधान का प्रयास कर रहा है पर छात्र आश्वासन पर अड़े हैं। रांची में आयोजित आदिवासी आत्म मंथन शिविर में महली समाज सहित आदिवासी संगठनों ने स्वशासन, पेशा, जल जंगल जमीन और युवा नेतृत्व पर मंथन किया। इस दौरान पढ़ा समन्वय परिषद ने कहा कि पेशा कानून लागू होना सराहनीय है, लेकिन ग्राम सभा गठन में अनियमितता और पारंपरिक परिसीमन की अनदेखी से खजाने के दुरुपयोग की आशंका है। परिषद ने 26% के बजाय 10.4% ही आरक्षण मिलने, नौकरियों में आउटसोर्सिंग से बंधुआ मजदूरी, बालू के अवैध उठाव और मातृभाषा में शिक्षा न होने से 9000 स्कूल बंद होने पर कड़ा एतराज जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर राजकीय श्रावणी मेले की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बाबा नगरी में श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन के अनुसार आज करीब 3.5 लाख कांवरियों के बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 की चौथी और अंतिम सोमवारी पर आज बाबा नगरी में एक बार फिर कांवरियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन के अनुसार आज करीब 3.5 लाख से अधिक कांवरियां बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलाभिषेक करने वाले हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमारिया, प्रवीण पुष्कर, SP पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। श्रावण मास की चौथी सोमवारी पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। इसी के साथ आज से वार्षिक झूलन उत्सव का भी प्रारंभिक तरीके से शुरुआत हो जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ श्रावणी मेले की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने पिछली 3 सोमवारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह 3 बजे से अर्घा के माध्यम से जलार्पण शुरू हुआ और भक्तों की कतार करीब 4 किलोमीटर तक पहुंच गई। भागलपुर से गंगा जल लेकर आए करीब 3000 डाक कांवरियों ने भी बाबा वासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी है और लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के कारोबार में शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 204 अंक गिरकर 77,337 पर और निफ्टी 67 अंक की गिरावट के साथ 24,185 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,51,600 रुपए

0: रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रूपये प्रति किलो है। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत पांकी थाना क्षेत्र से 3 शातिर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से कार्बाइन, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। तीनों आरोपी चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
1: रिकवरी के समय इनके पास से एक देसी कार्बाइन, 7 गोली, एक खोखा, एक मैगजीन और 2 बाइक बरामद हुई है। पूर्व में भी इनके द्वारा लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के केस में इनको कांड दर्ज हुए इनके अगेंस्ट में, और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य करते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। व्यक्तियों को वहां से खदेड़ कर पकड़ा।
0: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं झारखंड की टीम उपविजेता रही। हॉकी झारखंड की जूनियर महिला टीम 2018, 19, 24 और 2025 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर चुकी है, जबकि कई बार उपविजेता भी रह चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर दिशम गुरु शिव सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज शुरू होगी यात्रा। अंतिम सोमवारी पर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, 3.5 लाख से अधिक भक्तों के जलाभिषेक का अनुमान। बासुकीनाथ में 4 किलोमीटर तक लगी कतार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। गढ़वा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब, झारखंड की टीम उपविजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये जरूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमजोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं, आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, जहां निसारा अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है? तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफे बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूं कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला जिंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाजा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूं तक पहुंचते पहुंचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों कि बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन, पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहां कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ से, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: little faces over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: We have about 80 companies.
3: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आर्गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
4: I appreciate both the state and the central government.

0: for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं
5: और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
6: पीएमएफएमई की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे

168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खयाम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए मामला राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार की जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा झारखंड के सभी जिलों से होकर गुजरेगी और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर अभियान चलाएगी। एक अन्य घटनाक्रम में रांची पुलिस ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम के एक्स अकाउंट की जांच शुरू कर दी है और अकाउंट संचालक की जानकारी हासिल करने के लिए एक्स कॉर्प के लीगल सेल को नोटिस भेजा है। राज्य में छात्रों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तीखी निंदा की है। बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग अनुचित है। श्री मुंडा ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
1: आज सीबीआई जांच में यह सरकार कोताही क्यों बरत? राज्य सरकार में अगर ईमानदारी है तो निष्पक्ष जांच कराए। हमें इसे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार ने गलत किया या सही किया है। छात्र मांग कर रहे हैं और छात्र के मांग के अनुसार वो अपना फैसला बताए कि हम करने के लिए तैयार है, बस इतनी बात है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में 18वीं वर्ल्ड अर्नेस चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। नई दिल्ली में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। राज्यपाल ने विजेताओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित जिला स्कूल में 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। राज्यभर से आए छात्रों ने इसमें विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
2: हर जिले से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और अपना उनके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है और हम लोगों को दिखा। बच्चे एक तो हमारे साइंस की ओर बढ़ेंगे, हमारे एक से एक इनोवेशन करेंगे। यही बच्चे तो हैं जो आगे आविष्कार करेंगे और नए नए इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और सुगम होगा।
0: श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर राज्य के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है, से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे से राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर

0: में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मौसम विभाग ने राज्य में 28 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। गुमला, सिमडेगा, लातेहार और खूंटी सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है, इसे डरना नहीं है। और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन
1: और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट, इसका पहला भाग। जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि

0: आना कैसा हुआ करता था।
1: हाँ
0: लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना, तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की,
1: जी
0: रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
1: बिल्कुल। और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा
0: जी,
1: भी कर ली है।
0: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं,
1: हाँ,
0: उनकी बात।
1: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: देखिए, यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी
1: हाँ
0: कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है,
1: हाँ
0: रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन
1: बिल्कुल।
0: लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
1: अच्छा।
0: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं, और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा, और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो
1: हाँ।
0: लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
1: बड़ा मुलायम मुलायम सा
0: हाँ
1: और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब
0: जी,
1: जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और
0: और
1: फिर
0: भाई
1: खा
0: आपको
1: लीजिए।
0: मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
1: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए

0: मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
1: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
0: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूं। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहां हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं
1: ओह खैर, दफ्तर तो है, यही रहूंगा 1 हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। हाँ सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा, उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है,

0: इसे कैसे पता चला? खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: जी,
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा न कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक

प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं। जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको, उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी

0: आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया
1: ये
0: है।
1: सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है।
0: हाँ
1: और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक-एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता
0: हाँ
1: है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने
0: बहुत
1: छोटे
0: छोटे
1: लगने
0: से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं, तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को,
1: और
0: मुश्किल
1: बड़ा
0: को
1: बना
0: बहुत
1: लेते
0: बड़ा बना
1: हैं, और
0: देते हैं।
1: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना
0: तो
1: होगा।
0: हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा। और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
0: हाँ
1: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
0: जी
1: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो
0: और
1: जाता है।
0: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल।
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है, ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: हमें संबल देता है और
0: जी
1: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
0: जी
1: और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद दो चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है, लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
0: जी
1: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते
0: हाँ
1: हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: खता।
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है।

0: का कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं
1: बिल्कुल, महान
0: उन्होंने,
1: व्यक्ति जो हुए हैं
0: हाँ,
1: उनके बारे
0: उन्होंने
1: में।
0: सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया, तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
0: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है, संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे ना हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना। तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना।
0: इसी
1: और
0: तरह
1: मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो
0: जी
1: इस तरह की बातें कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
0: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
1: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत
0: जी
1: सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि
0: बिल्कुल
1: हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हम साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें। सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं। बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुने। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
0: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये
0: हाँ
1: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की है। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव में देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी एमएसएमई योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहली बार स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने बताया कि केंद्र सरकार व्यापार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही है। सावन के अंतिम सोमवार को मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंधन, जिला प्रशासन और स्वच्छता कर्मियों द्वारा सुरक्षा, साफ सफाई और महाप्रसाद की व्यापक व्यवस्था की सराहना की गई। मौसम विभाग ने राज्य में 28 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
1: क्या
2: ये माध्यम से,
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो। ये कितना खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
2: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
2: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो उसमें से
1: आज कितना ज्यादा है।
2: यस
1: जी जी,
2: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है, उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटाइक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट

0: को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटाई एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
0: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के।
0: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा संभाल
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं,
1: जी
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाई है, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
1: परमानेंटली डैमेज होने का
0: डैमेज
1: मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
0: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी, आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं, और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहाँ जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए।
1: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं,
0: हाँ।
1: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग, आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम
1: यस,
0: एक्सट्रीम हो जाता
1: तो ये
0: है।
1: बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं, तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है, तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें, उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे
1: यस,
0: पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूं तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली, ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए,
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल।
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: 3 महीने के कितने हो गए? तो
0: जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं।
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो, तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए, जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, जो एबनॉर्मल है,
0: ठीक
1: इसको
0: बात
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है।
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है, या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं, वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है।
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें।

0: उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है. दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं. और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू, सिंपल चीज है, एक आपको बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं.
1: बिल्कुल.
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है. तो वो आहिस्ता जो आना है, वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है.
1: जी बिल्कुल.
0: जितना शेडिंग फास्ट, उतना जल्दी गंजापन.
1: ये समझने की बात,
0: ये समझने की बात है. तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है. और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट. तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के.
0: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट.
1: ओके.
0: एक डिग्री नहीं है.
1: जी जी.
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं.
1: ओके.
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है. तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर. यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं.
1: जी जी जी. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं हाँ। डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल, जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे
0: बढ़िया
1: तो
0: बात बोली।
1: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है।

0: और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं
0: 40 साल के, 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोज किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोज किया
1: जी, ये
0: कि
1: बहुत आज के जमाने की चीज है।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई
0: यस
1: अगर खान पान ठीक नहीं किया तो
0: नहीं,
1: इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं
1: हाँ,
0: और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है।

0: होता है वहां हेयर फॉल होता है,
1: उसको कैसे टाला जा सकता है?
0: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
1: ओके
0: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स

0: अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
1: इस उम्र में तो सबका होता, सबका, हमारा भी हुआ था,
0: बिल्कुल यही डायलॉग होता है।
1: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं,
0: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया,
1: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
0: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शिकाकाई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
0: मेहंदी रीठा शिकाकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, पैच का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इंप्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनका इंप्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी है और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
0: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया, या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इंप्रूव, ऑल इज वेल।
1: जी,
0: यू विल इंप्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
0: yes.
1: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे
1: हैं। तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओ हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओ हो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओ हो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है वापस, शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: यस,
0: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो ये
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं?
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: दिन भर का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटर

0: इंटरनल फ्लोरा जो होता है लाइनिंग वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस बिल्कुल
0: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए। ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है इसके साथ, जब ये रिसर्च किया हुआ है इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
1: बिल्कुल
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी, और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना. इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोक

0: स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
1: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है।
0: बहुत बड़ा भ्रम है
1: जी।
0: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
1: जी,
0: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है। हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
1: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
0: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
1: जी,
0: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
1: तो ये समझने की जरूरत है।
0: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
1: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यस,
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना, न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
6: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज उपाध्यक्ष

0: अध्यक्ष डीबी सुंदरारामम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर टाटा स्टील के रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव अरविंद कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने डिप्लोमा इन एडुकेशन एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के लिए चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य में पहली बार एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड और ग्राउंड क्रू जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन की चेतावनी के बाद ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और गश्त को मजबूत करने के लिए पुलिस बेड़े में 14 नए चारपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग तेज होगी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तरहसी थाना क्षेत्र के तिरौंधा गांव में छापेमारी कर एक किराना दुकान से 490 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में दुकान संचालक अंकित कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने और तेज जलधारा से दूर रहने की अपील की है। मछुआरों को भी नदी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना, फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं, खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है। बारिश

0: है गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली,
1: एहसान तेरा
2: दाम मुझ पर,
0: फिल्म चिराग,
1: तेरी आंखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या,
0: फिल्म मासूम,
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी
2: हैरान हूँ मैं,
0: और फिल्म मंजिल, आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ के ध्वनि तरंगों पर। शाम के 5:30 हुए हैं।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता मित्रों, अब आइए आज अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 5:35 पर महिला बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा घर आंगन। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वाति सहाय की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। 6:02 पर कृषक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और प्राकृतिक खेती विषय पर आप सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता सुन सकेंगे। 6:30 ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा, चर्चा का विषय होगा पशुओं के लिए आहार व्यवस्था और अंतर्वर्ती खेती के लाभ। इसके साथ ही पलामू में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं विषय पर विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से की गई बातचीत आप सुन सकेंगे। जहां शाम 7:15 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। हम भूलने क्यों लग गए, ये भेंटवार्ता का विषय होगा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, इनसे बातें होंगी संजीव कुमार लाल की और कार्यक्रम होगा कल्याण 7:45। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से शाम 8:00 से। रोजाना की तरह फिल्मी गीतों का आनंद आप पुनः ले सकेंगे रात्रि 10:00 से। कार्यक्रम होगा रजनी गंधा। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की।

अब आइए आज अपने केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 9:15 हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और रोजाना की तरह हम विविध भारती की सेवा आपको देंगे रात्रि 9:30 पर। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की। और इस प्रकार हम अपनी सभा की समाप्ति करेंगे रात्रि के 11:10 पर। जी हाँ, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

एक बार फिर से स्वागत है अब तमाम महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन में। आज हम एक बात साझा करना चाहेंगे, महिला बहनों को अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहने की आवश्यकता है। अक्सर महिलाएं परिवार की देखभाल में खुद को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे हीन स्वास्थ्य, कमजोरी और गंभीर बीमारियां पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। जी हाँ, ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज उनके पोषण में आवश्यक है। दूध और दही से शरीर को पर्याप्त कैल्शियम हम देते हैं। आयरन की कमी से बचने के लिए पौष्टिक आहार भी हम लेते हैं, इसकी आवश्यकता उन्हें नितांत है। दिन भर में भरपूर मात्रा में वो पानी पिए ताकि अधिक स्वस्थ रह सकें। सक्रिय जीवन के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट सैर या योग की आवश्यकता है। साल में एक बार पूरा स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवाएं। हड्डियों और दिल की सेहत का विशेष ध्यान रखें। शरीर के किसी भी असामान्य लक्षण को अनदेखा ना करें और चिकित्सक से संपर्क अवश्य स्थापित करें। रोजाना रात्रि में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तनाव कम करने के लिए अपनों से बात करें या पसंदीदा काम करें। जी हाँ, ये बातें हुई महिला बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित, किस प्रकार वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: और अब इस गीत के बाद एक वार्ता की बारी है। विषय है स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। वार्ताकार हैं स्वाति सहाय।
1: तमाम श्रोताओं को आपकी बहन स्वाति सहाय की तरफ से नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम। आज का युग परिवर्तन, अवसर और आत्मनिर्भरता का युग है, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ने की क्षमता रखता है। इस बदलते परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वे आज समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी अनेक महिलाएं आज भी आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। ऐसे में स्वरोजगार, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एक ऐसा माध्यम बनकर उभरता है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बना सकता है। सदियों से महिलाओं ने अपने परिवार और समाज की आधारशिला को मजबूती दी है, परंतु अब समय आ गया है कि वे अपने सपनों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें। स्वरोजगार इसी देश में एक सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को अपनी प्रतिभा, कौशल और इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। स्वरोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति भी देता है। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानती है और समाज में एक नई पहचान स्थापित करती है। स्वरोजगार का अर्थ है अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करना। यह न केवल आय का स्रोत है, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जब महिलाएं स्वरोजगार अपनाती हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को बदलती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा देती हैं। सबसे पहले स्वरोजगार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है। उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आज कई महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद जैसे अचार, पापड़ आदि के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास का विकास। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो उसमें आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। वह समाज में अपनी पहचान बनाती है और अपने अस्तित्व को महसूस करती है। स्वरोजगार महिलाओं को यह अवसर दे

होता है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारे। तीसरा, स्वरोजगार सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम। जब एक महिला सफल होती है तो वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती। इसमें समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं और सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में सरकार भी महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू और विस्तार कर सके। स्वरोजगार के क्षेत्र में कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए एक अत्यंत सुलभ और प्रभावी विकल्प है। कुटीर उद्योग ऐसे छोटे स्तर के उद्योग होते हैं जिन्हें महिलाएं अपने घर से ही सीमित संसाधनों के साथ आसानी से शुरू कर सकती, जैसे सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार पापड़ बनाना, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन या सजावटी वस्तुएं तैयार करना आदि। इन कार्यों में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और स्थानीय बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। कुटीर उद्योग महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके कौशल को पहचान दिलाने का माध्यम भी बनते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह उद्योग महिलाओं के लिए रोजगार का एक अस्थायी साधन प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाती हैं और समाज में अपनी एक सशक्त पहचान स्थापित करती हैं। डिजिटल युग ने भी महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। आज महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, Instagram, Facebook और ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon, Meesho, Flipkart इत्यादि के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को देश विदेश तक पहुँचा सकती। इससे उन्हें बाजार की सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। श्रोता मित्रों, हम आपको बताते चले, विश्व भर में ग्रामीण महिलाओं को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुंच जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करके इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रयास महिलाओं को अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करते हैं और ग्रामीण समुदायों में अस्थायी बदलाव ला रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के सीमित अवसर होते हैं। शिक्षा, कौशल या आय के अवसरों की कमी के कारण कई महिलाएं गरीबी में फंसी रहती हैं। उनसे आम तौर पर घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक खेती में मदद करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके पास व्यक्तिगत विकास या रोजगार के लिए बहुत कम समय बचता है। कई मामलों में ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच बहुत कम होती है। वे पूरे घर के कामों में मदद करने के लिए अक्सर जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी क्षमता का विकास नहीं हो पाता और वे आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। कौशल और आय अर्जित करने के अवसरों के अभाव में ये महिलाएं अक्सर गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं। कौशल विकास इस दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। जब महिलाओं को कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल साक्षरता या उद्यमिता जैसे नए कौशल सिखाए जाते हैं तो वे बेहतर तरीके से आजीविका कमा पाती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाती है। ये कौशल न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं। नए कौशल सीखकर ग्रामीण महिलाएं अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, कार्यबल में शामिल हो सकती हैं या अपने समुदायों में नेतृत्व कर सकती हैं। इससे न केवल महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव आते हैं। कौशल विकास के लाभ केवल व्यक्तिगत महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। यह ग्रामीण महिलाएं कौशल प्राप्त करती हैं तो वे अपने समुदायों में आदर्श बन जाती हैं। वे अपने परिवारों का बेहतर भरण पोषण कर सकती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकती हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। कुशल महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए कृषि या खाद्य प्रसंस्करण में

0: प्रशिक्षित महिलाएं अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और अपने समुदायों को भोजन और सामान उपलब्ध करा सकती हैं। छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाएं दूसरों के लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो उनके पास अपने जीवन और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होता है। वे अपने स्वास्थ्य, आवागमन और व्यक्तिगत विकास के बारे में निर्णय ले सकते, जिसे मजबूत और स्वस्थ समुदाय बनते हैं। बेशक इस प्रकार हम पाते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के विकल्प का सशक्त माध्यम है। वहीं हम मानते हैं कि स्वरोजगार अपनाते समय महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पूंजी, पैसे की कमी होती है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे बच्चों की देखभाल और घर का काम महिलाओं के समय और ऊर्जा को सीमित कर देती हैं। कई बार समाज की संकीर्ण सोच और सहयोग की कमी भी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। उचित प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान और बाजार की जानकारी का अभाव भी एक बड़ी बाधा बनता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी न होना भी आज के समय में पीछे कर सकता है। इन सब के बावजूद यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास मिले, तो वह इन चुनौतियों को पार कर स्वरोजगार में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिलाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वरोजगार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक प्रभावी और अस्थायी माध्यम है। यह उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर महिला अपने भीतर की क्षमता को पहचाने, आत्मनिर्भर बने और यह संकल्प ले कि हम सदैव आत्मनिर्भर रहेंगे और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। जब महिला सशक्त होती है, तो परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है, तो राष्ट्र सशक्त बनता है। धन्यवाद।
1: हमारी महिला बहनें सुन रही थी वार्ता, विषय था स्वरोजगार अपनाए और सशक्त बने। वार्ताकार थी स्वाति सहाय। और इसी के साथ अब हमारा समय कार्यक्रम घर आंगन से अनुमति लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। दीजिए अब संतोष कुमार को कार्यक्रम घर आंगन से आगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं मुख्य प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल

के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोग। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सियासत तेज है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कोर्ट के कदम का स्वागत करते हुए फॉरेंसिक जांच की मांग को सही ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा छात्रों के कंधे पर सवार होकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों ने पहली परीक्षा के आधार पर परिणाम की मांग की, जबकि जेएसएससी ने जांच में संदिग्ध गतिविधियों और अनधिकृत एक्सेस के पुख्ता संकेत मिलने का हवाला दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 25 अगस्त

0: से 4 सितंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान चलेगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक परिवार एक मतदान केंद्र व्यवस्था लागू करना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रामगढ़ से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा की शुरुआत की गई, जहां अभ्यर्थियों ने लुकैयाटांड में दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बीच नेमरा के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय परिसर में जेएसएलपीएस सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित राखी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस वर्ष जिले के लेस्लीगंज पड़वा और नाबाबाजार प्रखंडों में महिलाओं द्वारा 40,000 राखियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सावन की अंतिम सोमवारी पर सरायकेला जिला शिवभक्ति में सराबोर रहा। कुदराशाही के प्रसिद्ध बाबा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, माजना घाट के पंचमुखी शिव मंदिर, चांडिल के जायदा शिव मंदिर और खरसावां के ऐतिहासिक रामगढ़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कृषक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में हम बातें करेंगे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। जी हाँ, अभी हमारे सभी किसान भाई बहन कृषि में लगे हुए हैं, वो अपनी उपज की क्षमता जो है उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रगति कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता हो जाती है। जी हाँ ग्रामीण बंधु, हम पूर्वानुमान सारांश बता दें मौसम से संबंधित। पिछले 3 दिनों में कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला कांके रांची में 120.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31.4 से 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सापेक्षिक आर्द्रता 71 से 89% के बीच रही। हवा की गति 1.2 से 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दर्ज किया गया। और मौसम संबंधी चेतावनियां ये आ रही हैं किसान बंधु कि 18 से 23 अगस्त के बीच भारी बारिश हुई और आगे बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और जोरदार सर्दी हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाई बहन, तेज हवाओं के कारण मक्का और अरहर जैसी खड़ी फसलों के गिरने और सब्जी वाली फसलों के फल झड़ने की आशंका जताई गई है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए हमारे किसान भाई आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दें। काट ली गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर आप रखें। बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें आप और बारिश के बाद की स्थिति से खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए हमारे किसान भाई इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। किसान बंधु, अधिक आर्द्रता और लगातार वर्षा से रागी फसल जो है, मड़ुआ जो है, उसमें ब्लास्ट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। अभी अधिक नेत्रजन का उपयोग करने से आप बचिए और लक्षण दिखने पर ट्राईसाइक्लाजोल 75% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप फसलों पर छिड़कीये। किसान भाई बहन, अगर हम धान की बात कर लें तो

रुक रुक कर शुष्क और गीले मौसम की स्थिति जो आप देख रहे हैं। नर्सरी में जीवाणु, पत्ती झुलसा रोग और पर्ण छिद्र अंगमारी जैसी जो बीमारियां हैं वो इसके लिए अभी अनुकूल हैं। जी हाँ किसान भाई, आप चेत जाइए और रोग को फैलने से रोकने के लिए हेक्साकोनाजोल साथ में प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर पत्तियों पर जरूर छिड़क दीजिए। यदि नर्सरी में ब्लास्ट की समस्या दिखाई दे तो टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सी एस्ट्रोबिन 25% WG 4 ग्राम या आइसोप्रोथी लेन 40 EC 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करिए और इसको 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। धान में एक और बात हम बताते चले ग्रामीण भाई बहन की, तना छेदक कीट के प्रकोप से बचाव के लिए खेत में डेढ़हाट एवं सफेद वालियां को निकाल कर आप नष्ट कर दीजिए। प्रकोप अधिक होने पर क्लोराट्रोनी लिप्रोल 18.5% का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से मिला करके आप छिड़काव करिए। आवश्यक नेत्रजन यानी यूरिया के प्रयोग से आप बचिए तथा कीटनाशी का छिड़काव आप जब भी करिए तो वर्षा रहित मौसम में ही करिए। किसान बंधु, अरहर यहाँ की मुख्य फसल है। हमारे अधिकतर ग्रामीण भाई बहन जो हैं वो अरहर की खेती करते हैं और अरहर की बात जहाँ तक आती है तो मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के तहत जो आपको अभी वर्तमान में देख रेख करने के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं कि अरहर की फसल में पानी से भरी मिट्टी और बारिश तने या जड़ की सड़न को तेजी से बढ़ने और फैलने में मदद करती हैं। जी हाँ किसान बंधु, खेत में पानी जमा नहीं होने दीजिए। बीमारी को एक ही जगह तक सीमित रखने के लिए प्रभावी और शुरुआती मुरझापन वाले पौधों की जड़ों के पास कार्वेंडा जिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप उसको जरूर डाल दीजिए। किसान बंधु, परवल में फल और बेल सड़न, पत्ती झुलसन देखी जा सकती है। खेत से क्षतिग्रस्त फल और बेलों को आप जरूर हटा दीजिए, बेलों माने लत्तर को, और उन्हें खेत में या उसके आसपास कभी नहीं रखिए। धूप वाले दिन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाइए और मेटालेक्सिक 8% मैंकोजेब के साथ मिला करके 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप मिलाइए और बारी बारी से छिड़क दीजिए तो काफ़ी लाभ पहुँचेगा। हमारे ग्रामीण बंधु लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती में लगे हुए हैं, वो बृहद पैमाने पर लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं और लत्तर वर्गियों में खासकर लौकी की बात हो तो लौकी के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए वो इस प्रकार से हैं। किसान भाइयों को ये सलाह दी गई है कि वे फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई के हमले पर बारीकी से नज़र रखें। जो बरसात के मौसम में लौकी, तुरई, करेला, खीरा और नेनुआ जैसी कुकुरबिटेसी बेल वाली फसलों को नुकसान पहुँचाती है, फल मक्खी से संक्रमित फलों को तोड़कर मिट्टी में हमें दबा देने की आवश्यकता है। फल मक्खी से इन फसलों को बचाने के लिए प्रति एकड़ 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने का भी सुझाव आपको प्राप्त हुआ है। जहाँ किसान बंधु, आप गाय पालन करते हैं और ग्रामीण भाई अगर गाय पालन ना करें तो खेती बाड़ी कैसे हो, और सबसे बड़ी बात कि गाय पालन जब हम करते हैं तो उनकी देखभाल हमारी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। पशुधन जितने स्वस्थ होंगे आप बेहतर मुनाफा प्राप्त करेंगे, ये माना हुआ है किसान भाई। इसलिए वर्षा एवं उमस के मौसम में पशुओं के बाड़े की साफ सफाई एवं जल निकासी की आप उचित व्यवस्था बराबर बनाकर रखिए। पशुओं को सूखा एवं हवादार स्थान पर रखिए तथा स्वच्छ पेयजल उन्हें उपलब्ध करवाइए। मच्छर, मक्खी एवं परजीवी नियंत्रण के लिए नियमित रूप से पशुओं एवं उनके जो बाड़े हैं उसकी निगरानी आप करिए। पशुओं को गला घोटू के साथ साथ लंगड़ा बुखार

अन्य प्रचलित संक्रामक रोगों के विरुद्ध समय पर टीकाकरण आवश्यक है। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखिए और लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करिए। जी हाँ किसान भाई, और हम आगे आपको यह भी बता दें सामान्य सलाह में कि नए बाग लगाने के लिए इच्छुक हमारे जो किसान भाई हैं वो अमरूद, लीची, नींबू तथा आम के पौधे इस माह के अंत तक भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये बातें आपको ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के तहत बताई जा रही है। जी हाँ किसान बंधु, नए बाग आप जब लगाइएगा तो गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर रिजेंट दानेदार 10 ग्राम प्रति गड्ढों में जरूर डाल दें, जिससे मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीटों से पौधों का बचाव आप कर सकें। जी हाँ किसान बंधु, और मौसम चेतावनी जो है तूफान और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण आप कभी नहीं लीजिए, खुले मैदानों या जलाशयों के पास आप बिल्कुल नहीं रहिए, बिजली या धातु की चीजों को मत छुइए उस समय, तार वाले बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए और जमीन पर भी सपाट रूप से नहीं लेटिए किसान भाई। तो ये तो बातें हो गई सुरक्षा की भी और खेतीबाड़ी में भी जो वर्तमान में जो हमें देखभाल करने की जो आवश्यकता है उस पे बातें हुई। जी हाँ, और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं एक प्यारा सा

0: हमारे ग्रामीण भाई बहन सुन रहे थे भरत सिंह भारती के गाए लोकगीत, और कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं प्राकृतिक खेती विषय पर सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता।
1: प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करता है। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैव कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें अन्य लाभों के अलावा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे टिकाऊ खेती को बल मिलता है। प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमें कि टिकाऊ खेती को भी समझना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लक्ष्य खेती के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है, साथ ही फसल और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना भी है। छोटे पैमाने के कृषक समुदायों के भीतर ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती की कई रणनीतियां हैं। इस दिशा में विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कार्यक्रम मिशन NMSA तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण में तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्तव में टिकाऊ खेती को अपनाने का मतलब है कि आप बिना पर्यावरण यानी मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित किए और बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को समाप्त किए अपने कार्यों से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बिना बाधित किए किसी विशिष्ट फसल में पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती या प्राकृतिक रूप से खेती करने के क्या लाभ हैं, और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन की समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में टिकाऊ खेती अत्यंत ही लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। टिकाऊ खेती अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है।

है। पर्यावरण जीवन का संबल है और हमारी अनेक प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से हमें स्वच्छ वायु, साफ पानी, हरे भरे जंगल, विविध पशु पक्षी और आधारभूत मिट्टी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को उसी अवस्था में अपनी आगामी पीढ़ियों को सौंप दें जिस अवस्था में यह हमारे पुरखों से मिली है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक आधारित खेती होने के कारण पर्यावरण संरक्षण में हमारी पूरी सहायता करती है। प्रदूषण की रोकथाम। टिकाऊ कृषि के फायदे में एक बहुत बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। टिकाऊ खेती में प्रयुक्त होने वाली कृषि अवशेष अपनी उपयोगिता से हमें लाभान्वित करके अंतिम रूप से प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाती है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। उदाहरण स्वरूप, इसमें प्रयुक्त होने वाली सड़ी गली गोबर की खाद, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलकर उसे किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करती। टिकाऊ कृषि अपनाने से लागत में भी कमी होती है। टिकाऊ खेती की विधियों में कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए इससे खेती की लागत में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशियों एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, जिससे किसान के लाभ में बढ़ोतरी तो होती ही है, समूची मानवता लाभान्वित होती है। जैव विविधता में बढ़ोतरी। टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेतों में अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों को पलने बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे कृषि परिवेश की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ पशुधन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। टिकाऊ खेती की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत खेती एवं पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। ऐसे में पशुधन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, टिकाऊ खेती मत्स्य पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि को प्रोत्साहित करती है। जैसे गाय पालन से गोबर मिलता है, उसी प्रकार मुर्गी पालन से जो अवशिष्ट निकलता है वह मछलियों का भोजन बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करके लागत में कमी और पशुधन के लिए लाभकारी है। हरियाली में भी वृद्धि होती है टिकाऊ कृषि से। टिकाऊ खेती की प्रकृति के अंतर्गत बागवानी एवं कृषि वानिकी को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिससे परिवेश की कुल हरियाली में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और हो जाती भी है। इससे एक ओर किसान को लंबे समय तक लाभ तो होता ही रहता है, इसलिए कि पेड़ जब लगते हैं तो उससे मिलने वाले लाभ किसान भाइयों को होते रहते हैं, जबकि पर्यावरण की भी सुहावना एवं संतुलित बना रहता है। किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी। टिकाऊ खेती की पद्धति के अंतर्गत एक ओर किसानों की लागत में कमी होती है तो दूसरी ओर खेती में वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के परस्पर उपयोग का एक ऐसा चक्र विकसित हो जाता है जिससे व्यर्थ पदार्थों का निकास शून्य हो जाता है। इससे किसान का आर्थिक लाभ बढ़ जाता है। साथ ही इससे केवल तात्कालिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता, वरन लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। टिकाऊ खेती को जब किसान भाई अपनाते हैं तो सामाजिक समानता में भी वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से किसान, श्रमिक समुदाय एवं परिवेश के मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी लाभ के बराबर भागीदार होते हैं, इसलिए इससे सामाजिक समानता व समरसता में वृद्धि होती है। किसान को जहां आर्थिक लाभ मिलता है वहीं
श्रमिक को निरंतर कार्य व मजदूरी की प्राप्ति

0: सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ अक्षय स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ कृषि के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती एक ओर खेती के कृत्रिम संसाधनों से परहेज करती है, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे पर्यावरण में अक्षय स्रोतों की वृद्धि होने लगती है। उदाहरण स्वरूप रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के स्रोतों में वृद्धि होती है। सुख शांति और सौंदर्य के स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ खेती के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता एवं परस्पर निर्भरता का जो समग्र जीवन संतुलन निर्मित होता है, वह मानवीय परिवेश में सुख शांति एवं सौंदर्य के स्रोतों में वृद्धि एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ कराता है। इससे कृषि क्षेत्र एवं परिवेश में जीवन की सार्थकता एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेत खलिहान एवं फसलों, किसान व श्रमिकों से अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। टिकाऊ खेती पशुधन के लिए भी उपयोगी है एवं अनुकूल सिद्ध होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थाई कृषि या टिकाऊ खेती द्वारा खेती जनित सभी प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही अंकुश लग जाता है और खेती प्रकृति का एक अवयव और अनुपम उपहार बन जाती है। टिकाऊ खेती के आधार पर विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने के प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे धान्य, दाल, तेल इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मृदा या मिट्टी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के जल संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण पहलू पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन कृषि मूल्य श्रृंखला के विविध चरणों में CO2 उत्सर्जन में कमी में योगदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए किसान भाइयों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए।
1: हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता, विषय था प्राकृतिक खेती। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, और अब चूंकि समय हो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए कार्यक्रम खेती बारी में बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम से आज्ञा।

कृषक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम ग्रामीण।

अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी ग्रामीण भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ग्रामीण बंधु, आज हम बातें करेंगे एक विशेष योजना की, और सर्वप्रथम हम जो बातें कर रहे हैं वो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ, और ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना और आधुनिक तकनीकों के जरिए पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल करना है। सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि को बनाना

पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। ड्रिप यानी टपक और स्प्रिंकलर यानी फवारा जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है।

की सब्सिडी भी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसान भाइयों को सामान्य कृषक भाइयों की तुलना में अधिक अनुदान मिलता है। आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से होंगे: आधार कार्ड, जमीन के कागजात, खैतानी भूमि रिकॉर्ड, वो खतियानी की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज के रूप में। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं और इसके अलावा अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या फिर ब्लॉक विकास अधिकारी जो हैं या कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। और ग्रामीण बंधु, अब खेती बाड़ी की बात तो हम जरूर करेंगे आपसे, और खेती बाड़ी की बात जब हम करेंगे आपसे तो अंतर्वर्ती खेती की बात आपसे करेंगे, क्योंकि अंतर्वर्ती खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे कि हम अगर एक फसल हमारी किसी कारण से बर्बाद भी हो जाती है तो दूसरी फसल हमें आबाद कर देती है। इसलिए अंतर्वर्ती फसल आप अवश्य अपनाएं अपने खेतों में। अंतर्वर्ती खेती आप जरूर करें। एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें जब हम उगाते हैं तो उसे आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से अपनाते हैं और इसी को हम कहते हैं अंतर्वर्ती खेती। इससे भूमि और संसाधनों का सही उपयोग हो जाता है, पैदावार बढ़ जाती है और किसान भाइयों की आमदनी में 20 से 30% तक अतिरिक्त लाभ होता है। दोनों फसल हो गए तो बम्पर लाभ। जी हाँ किसान बंधु, अधिक पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ही जमीन में कम समय में ज्यादा फसल उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है। और दलहनी फसलें जैसे मूंग या उड़द हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में उसे मिला देती हैं जिससे उर्वरता भी बढ़ जाती है। अगर आप मूंग उड़द की वगैरह की खेती, दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं तो अंतर्वर्ती में तो। और कीटों और रोगों से बचाव की जहाँ तक बात आती है तो एक फसल दूसरी फसल के कीटों को दूर रखती है जिससे कीटनाशक पर भी आपको खर्च बच सकता है। एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल से किसान भाई को घाटा नहीं होता। पानी, धूप और खाद का सही उपयोग आप कर सकते हैं। अंतर फसलीकरण के फायदों का तो हमने बातें इसमें की और अंतर्वर्ती खेती के बारे में ये हम आपको बता दें कि आप किस फसल के साथ कौन सी दूसरी फसल उगाना चाहते हैं ये ज़्यादा आपको मायने रखता है। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान दें और आपके क्षेत्र की मिट्टी और सिंचाई की स्थिति कैसी है ये बात आप जरूर ध्यान दें। और अंतर्वर्ती एक ऐसी पद्धति है जो हम बता दें किसान भाई कि ये हर जगह लागू कर सकते हैं आप। बस फसल का चुनाव बेहतर रूप से करिए और अंतर्वर्ती खेती अपनाइए और एक समय में ज्यादा मुनाफा प्राप्त करिए। तो ये तो बातें हो गई अंतर्वर्ती खेती की और अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं।

0: किसान भाई बहन आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाय लोकगीत। और कार्यक्रम में अब बातें पलामू जिला में प्राकृतिक खेती की संभावना विषय पर विशेषज्ञ हैं दिलीप कुमार पांडे। तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती की, और प्राकृतिक खेती की पलामू जिला में क्या संभावनाएं हैं इस पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ आज साझा करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि प्राकृतिक खेती है क्या।
1: प्राकृतिक खेती में वैसी खेती को जो पुरातन तरीका से हम लोग पहले करते आ रहे थे
0: जी,
1: जिसमें जमीन का जो विनाश की प्रकृति अभी हम लोग देख रहे हैं, तो विनाश की प्रकृति नहीं हो, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय का, मतलब इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जो पहले से भी गाय खेती से रिलेटेड थी उसको मेंटेन करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन को, पर्यावरण को बचा करके रखना, और जो उत्पादन है इस उत्पादन में कमी भी नहीं लाना है। तो प्राकृतिक खेती का मुख्य मतलब यही है कि इसमें किसी भी तरीका से जमीन की उर्वरा शक्ति को प्रभावित नहीं होने देना है।
0: इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते?
1: इसके मुख्य स्रोत के तौर पे हम लोग चार चीज को इंक्लूड करते हैं। जैसे इसको आप लोग वेबसाइट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से देखते हैं, इसमें चार मुख्य स्रोत हैं। एक जीवामृत है, जीवामृत में जीवाणु आधारित घोल हम लोग तैयार करते हैं। तो जीवाणु आधारित जो घोल तैयार करते हैं उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर

0: गाय का मूत्र, बेसन और गुड़ का प्रयोग करके प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो मुख्य इसमें है, बीजामृत। बीजामृत का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं बीज उपचार के लिए। बीज उपचार के लिए हम लोग इसमें भी गाय के गोबर का, गौमूत्र का, चूना का प्रयोग करते हैं और इससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट हम लोग पहले वेबिस्टिन से किसान भाई करते थे या अन्य किसी फंजीसाइड से, तो इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं हम लोग बीज उपचार के लिए। तीसरा चीज़ है इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, जो भर्मी कंपोस्ट जो हम लोग बोलते हैं, केचुआ खाद की निरंतरता को बनाए रखना है
1: जी।
0: और तीसरा है जमीन में मॉइस्चर को बनाए रखना
1: जी,
0: जमीन में जो पानी धारण की क्षमता है उसको मेंटेन करना, और किसी भी तरीका से कीटनाशक, जो रासायनिक कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है।
1: अच्छा अच्छा, प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई लोग इसका किस तरह से सदुपयोग करें।
0: देखिए, सदुपयोग करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जो मानसिक रूप से तैयार होना होगा। जैसे पलामू के किसान जो हैं, यहाँ 80% से 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है, और उस जमीन में आज के समय में जो यंत्रीकरण हम लोग कहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलने की संभावना न के बराबर है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, और ट्रैक्टर चलाने से या जो उनमें खरपतवार नासी का, जीवाणु नासी का, या जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग करने से जो उनकी खेती में लागत है, वो जो उनको मुनाफा आना चाहिए, वो लागत का लगभग 50% हिस्सा इसमें उनका चला जाता है,
1: चला जाता है जी।
0: तो जब हम उन लोग को देखते हैं कि निर्वाही खेती भी जैसा भी बन के नहीं रहता है, किसान भाई अक्सर कहते सुने गए हैं कि खेती में हमें घाटा लगता है, तो किसानों को जब हम लोग बेहतर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज देखते हैं ऑर्गेनिक उत्पाद का मार्केट बहुत बढ़िया है
1: जी,
0: ऑर्गेनिक उत्पाद का मार्केट बहुत बढ़िया है। दूसरा चीज क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी इसमें बेहतर है। जब कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आज समाज में देखेंगे 18-20 साल के लड़के कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसको भी रोकना है। और पलामू में, चूंकि जो पलामू का एरिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ की जमीन है बहुत ही सूटेबल है, खासकर यहाँ के अभी तक हम लोग देखते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग कम हुआ है, लोग की चूंकि क्षमता कम है, आर्थिक क्षमता कम है, उसके चलते वो फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करते हैं। तो पलामू में देखिए इसकी असीम संभावना है, और आने वाले समय में हम लोगों को लौटना ही होगा। इसका मुख्य और मुख्य एकमात्र आधार है कि आपको इस खेती को बेहतर ढंग से करने के लिए, आगे आपको सर्वाइव करने के लिए, अपने खेती में एक गाय को जरूर आपको जोड़ के रखना होगा। यदि आप गाय को जोड़ करके रखते हैं, जो कि खेती का एक मूल आधार है, तो हमेशा मैंने जो प्रॉफिट में किसान रहेगा, उसका लागत समझिए कि जीरो के बराबर, उसका लागत शून्य रहेगा, और जो भी उसका होगा वो उसका मुनाफा में जाएगा
1: जी। अब प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई लोग अगर करना चाहे मतलब प्राकृतिक खेती, तो इससे लाभ और हानि की बात आती है, मतलब उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो।
0: देखिए, जब किसी भी चीज में हम लोग बैक, जैसे हुआ कि हमको पीछे लौटने की बात आती है, हमेशा बात आती है कि इसमें जब प्राकृतिक खेती की बात हम करते हैं, तो ये तो पीछे लौटने वाली बात हुई। जब कृषि में क्रांति आ गई, तो कृषि में क्रांति आई 1960 के दशक में, और हम लोग उसका दुष्परिणाम भी आज देख रहे हैं
1: जी।
0: दुष्परिणाम के तौर पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारा जो यहाँ का स्थानीय स्तर की बीज थी, वो बीज लुप्त होते जा रही है, जिसका कि शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं कि वो बीज रहता तो आज थोड़ा सा भी अकाल की संभावना कभी हो जाती है, तो उस अकाल की संभावना से वो पार पा जाते हैं
1: जी।
0: जैसे पहले लोग बोलते थे कि 100 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता था, लेकिन आज का ट्रेंड आप देखिएगा तो 10-12 वर्षों के अंतराल पे कम से कम 2 बार तो बहुत प्रभावित करने वाला अकाल होता है, और आंशिक रूप से अकाल लोग हमेशा झेल रहे हैं। तो अकाल नहीं है कि पानी नहीं हो रही है, पानी हो रही है, लेकिन मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो चुकी है
1: जी।
0: दूसरा चीज है

0: जो वैरायटी सीड का था वो वैरायटी चूंकि बदल गया है, हमारे यहाँ का जो मूल रूप का बीज था वो बीज रह नहीं गया है। किसान चूंकि हमेशा बाहर से बीज खरीदते हैं और उसको बदलते हैं, पैसा लगाते हैं, तो बीज भी नहीं रही। तीसरा चीज क्या होता है, रोग का आक्रमण। रोग का आक्रमण कीड़ों का इस तरीका से आक्रमण होता है कि प्रतिरोधक क्षमता जो होना चाहिए वो नहीं होने के चलते पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक खेती हम लोग अपनाए उसका लाभ की अपेक्षा दुष्परिणाम ज्यादा हुआ है।
1: जी जी।
0: और प्राकृतिक खेती पे जहां तक हम लोग बात करेंगे, इसमें जमीन के साथ हम कम छेड़छाड़ कर रहे हैं। जमीन के साथ कम छेड़छाड़ करने का मतलब होता है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से खेती में सहयोग करने वाले कीटाणु हैं, उनकी संख्या को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। जो वीड है, घास पतवार कहते हैं, उनकी संख्या को भी हम विनष्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एक संख्या को हम नियंत्रित कर रहे हैं। तो जब किसी को आप नियंत्रित कर रहे हैं तो उनका एक सही फल आपको देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो इसमें चूंकि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है जो लोगों को दिग्भ्रमित होने की जरूरत है, इसमें सारा कुछ हम लोग पौधा का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, मॉइस्चर को भी मेंटेन कर रहे हैं, बीज का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सारी चीज आधुनिक रूप में कर रहे हैं। लेकिन हमारी तकनीक क्या हो रही है, स्वदेशी तकनीक है जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, किसान के घर में जो अवेलेबल है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हमेशा सफलीभूत होने की ज्यादा परिणाम पाया गया है कि यह सफलीभूत है। पुणे में इस पे बहुत बड़ा शोध हुआ है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे किसानों को विश्वास दिलाने की जरूरत है तो वहां पे किसान लोग अपने खेत में, जैसे लोग बोलते हैं कि अपने खेत के एक भाग में करें, अपने खेत के एक भाग में करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि केमिकल फर्टिलाइजर बगल के खेत में है और बगल में आप प्राकृतिक खेती का परिणाम देखना चाहेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन आप बगल में कीटनाशक का, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किए तो ये देखा जाए कि प्राकृतिक जो हमारे मित्र कीट थे वो तो मारे गए, फायदा नहीं करेंगे। खेत में हमने खाद दिया वो भीतर से भीतर रिस करके इसके जमीन को प्रभावित करते हैं। तो इसके परिणाम को देखने के लिए किसान को स्थानीय स्तर पे एक पैच बनाना होगा जहां पे लोग कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ के एरिया में इसका परिणाम देख सकते हैं। एक किसान एक पार्ट को देख करके हमेशा फेलियर होगा।
1: जी, और इससे जुड़ी हुई कोई बात है जो छूट रही हो?
0: इससे जुड़ी हुई बातें मैं किसानों को जैसे बीजामृत बनाने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक देना चाहूँगा, संक्षिप्त में दे रहा हूँ। किसान को बीज उपचार के लिए बीजामृत बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए किसान भाइयों को 5 किलो गोबर का खाद, 5 किलो फ्रेश गोबर का खाद गाय का, और 5 लीटर गोमूत्र होना चाहिए, 50 ग्राम चूना, 1 किलो जो पलास या पलास के नीचे का वो मिट्टी को ले और 20 लीटर पानी ले। वो क्या करेंगे कि 5 किलो जो गोबर लेंगे उसको किसी कपड़ा में, मसलिन क्लॉथ जो हम लोग बोलते हैं, उसमें करके 20 लीटर पानी में रात भर डुबा करके रखेंगे और दूसरा दिन सुबह उसको मैसेंगे इस तरीका से कि जो उसका तत्व है वो पानी में घुल जाए, और उसी समय में पैरेलल में उसी दिन जो 50 ग्राम चूना है उसको 1 लीटर पानी में डाल करके रखेंगे। दूसरा दिन इस दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसको पूरी तरीका से मिला लेंगे, और जो 1 kg पलास के नीचे का, पेड़ के नीचे का मिट्टी था वो उसको मिला करके एक घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल से बीज का उपचार करेंगे, जैसे पहले बीज का उपचार करते थे मिला करके, छिड़क करके और छाया में सुखा देते थे, इसके बाद बीज की बुआई करते थे। तो इसका किसान शुरुआत में प्रयोग करके देखें, उनको सही परिणाम निकलेगा और जो भी जो बीज उनका होगा खेत में वो स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा और रोग से लड़ने की क्षमता होगी। तो कम से कम लोग इस बीजामृत का प्रयोग करके किसान देखें।
1: जी, आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और प्राकृतिक खेती से जुड़ी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ किसान भाई बहन, और कार्यक्रम में चलने से पहले अब हम आपसे संक्षिप्त बातें ये कर लें कि

पशुओं में गांठदार त्वचा रोग होता है, इसकी देखरेख आप जरूर करिए। इस बीमारी का लक्षण यह है कि संक्रमण के प्रारंभ में आंख एवं नाक से स्राव, लसिका ग्रंथियों में सूजन, तेज बुखार, दुग्ध उत्पादन में गिरावट, त्वचा पर गांठदार घाव का उभरना जो कुछ समय के बाद लगभग पूरे शरीर पर फैल जाता है। आमतौर पर मादा पशुओं में थनैला होना देखा गया है। कुछ बीमार पशु इस रोग के संक्रमण से निमोनिया के शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी जो है इससे मृत्यु दर लगभग 10% तक इसकी है। तो जो आपके पास पशु हैं, खासकर गौ जाति, तो उनके बचाव के लिए समय समय पर स्वस्थ पशुओं का टीका आप लगवाइए। पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना अविलंब आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दीजिए। बीमारी के प्रारंभ में ही पशुओं का उपचार कराइए, बीमार पशु को अलग रखिए अन्य पशुओं से और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। मच्छर, मक्खी एवं चमोकन पर नियंत्रण का कारगर उपाय करिए आप, और संक्रमित पशुओं को बाहर चारागाह में चरने के लिए नहीं भेजिए। संक्रमण के दौरान पशुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करिए किसान भाई, और गौशाला में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखिए, और बीमार पशु द्वारा उपयोग में लाए गए पुआल, बोरा वगैरह को कहीं अलग रख दीजिए। तो ये तो बातें हो गई गांठदार त्वचा रोग की जो पशुधन में लगते हैं। और अब चूंकि हमारा समय विदा लेने का आपसे हो चला, इसलिए बातें आज बस यहीं तक दीजिए। अब अपने भाई संतोष कुमार को

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz के ध्वनि तरंगों पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ और एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कैंपा शासी निकाय की उच्च स्तरीय बैठक, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के दिए कड़े निर्देश। मानव तस्करी एवं मानवाधिकार विषय पर रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन, न्यायपालिका पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, 3 कांस्य पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जेपीएससी सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 15 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दे चुका है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का स्वागत करते हुए इसे अत्यंत गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और

0: सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
1: सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी चिंतित था कि जेपीएससी वो एजेंसी है जो सिविल जजेस की परीक्षा लेती है, यानी न्यायिक सेवा में भी पारदर्शिता है कि नहीं। उन्होंने नोटिस जारी किया है जेपीएससी को, जेएससी को, राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि न्यायालय से अंततः छात्रों को न्याय मिलेगा। गलत तरीके से जो लोग भी चुनाव हुए हैं वो बाहर होंगे और सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।
0: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने जेपीएससी परीक्षा मामले पर कहा है कि भाजपा छात्रों के कंधे पर सवार होकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी, जबकि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पेपर लीक और रोजगार माफिया के खिलाफ थी।
2: राज्य सरकार के जो सीआईडी विभाग है उनका वर्क जो हो रहा है वो सराहनीय है। इसमें कहीं दो राय, हर दिन नई चीजें खुल के आ रही, सब मीडिया के पास साफ साफ, कोई हाइड एंड सीक नहीं। तो राज्य सरकार को कंटेस्ट करना चाहिए कि अब मिड में सारी चीज जब हो रही है तो एक नया एजेंसी को यहाँ आने की कोई जरूरत।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। गौरतलब है कि सीआईडी जांच के बाद सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रामगढ़ से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा की शुरुआत की गई, जहां अभ्यर्थियों ने लुकियाटार में दिशम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि ये 24 जिलों की यात्रा भर्ती व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक को रोकने तथा निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित कराने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है।
3: गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग 24 जिला का भ्रमण का शुरुआत कर रहे हैं, जो 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे और गांव से शहर तक इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। और जितने भी एग्जाम पर सरकार कार्रवाई की है 45 विवादित परीक्षाओं पर, चाहे वो माननीय हाईकोर्ट में यह मामला जाए, ये आदेश बरकरार रहना चाहिए।
0: इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन की चेतावनी के बाद निमरा के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हेमंत सोरेन के ग्राम प्रधान यानी मांझी हड़ाम है और बिना उनकी अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में घुसने या विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
4: देवेंद्र नाथ महतो जो हेमंत सोरेन का पुतला दान करने के लिए खोज रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए। हेमंत सोरेन का जो हम लोग का गांव का मझियाड़ा है उसका पुतला दान नहीं करने देंगे। अंदर घुसना है पहले तो हम लोग का गांव का मझियाड़ा जो रहते हैं जोक मांझी नायके भद्रा, उस सबसे पहले आपको लेना चाहिए आदेश, उसके बाद हम अपना गाँव में हम लोग घुसने देंगे।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों ने पहली परीक्षा के आधार पर परिणाम की मांग की, जबकि जेएसएससी ने जांच में संदिग्ध गतिविधियों और अंधिकृत एक्सेस के पुख्ता संकेत मिलने का हवाला दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित कैंपा शासी निकाय की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रतिकारात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत जारी वनीकरण योजनाओं की समीक्षा की और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मानव तस्करी एवं मानवाधिकार विषय पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि पीड़ितों को तस्करों से बचाने के साथ साथ समाज में उनके सम्मानजनक पुनर्वास और दोबारा तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान चलेगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक

0: परिवार एक मतदान केंद्र व्यवस्था लागू करना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव में आई महिला उद्यमी एमएसएमई योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहली बार स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा। बिरसा मुंडा जनकल्याण प्रचार अभियान के प्रमुख राजमणि ने बताया कि सरकार महिलाओं की यात्रा और स्टॉल का खर्च लौटाती है, जिससे पूरा मुनाफा सीधे उन्हें मिलता है।
1: हमारा जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव उत्सव, वो एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से पीएमएस स्कीम होता है। जो महिलाएं उद्यमी है, स्टॉल लगाना चाहती है, वो 30,000-40,000 रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन कभी कभी मुनाफा नहीं होता, उनके लिए बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि आप एक काम करें, आप स्टॉल का पैसा हमसे पूरे वापस ले जाए, मतलब अगर कहीं स्टॉल पे लगाती है तो 30,000 रुपए उनका पूर्ण रूप से वापस हो जाएगा। इस तरह से सोच से हमारी आज महिलाएं तरक्की कर रही है।
0: खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और गश्त को मजबूत करने के लिए पुलिस बेड़े में 14 नए चारपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग तेज होगी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
2: झारखंड सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल करते हुए हम लोगों को 14 और वाहन दिए गए हैं, के माध्यम से हम लोग और अच्छे रूप से खूंटी में पेट्रोलिंग कर पाएंगे और थाना को अपने डेली कार्य निष्पादन में भी इससे सहूलियत, और अभी जल्द ही हम लोगों को 18 और बाइक्स मिलने वाली है, जिससे कि हम लोग लगातार नियमित रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग कर सकेंगे और आम लोगों तक पुलिस की पहुँच को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकेंगे।
0: सावन की अंतिम सोमवारी पर आज पूरा झारखंड शिवभक्ति में सराबोर रहा और राज्य के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध देवघर के बाबा धाम में अंतिम समाचार मिलने तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके अलावा दुमका के बासुकीनाथ, खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम और सरायकेला के बुधेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न जिलों में लाखों भक्तों ने जलार्पण किया। बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर खुशी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ और एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कैंपा शासी निकाय की उच्च स्तरीय बैठक, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के कड़े निर्देश दिए। मानव तस्करी व मानवाधिकार विषय पर रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन, न्यायपालिका पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, 3 कांस्य पदकों पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: आकांक्षी जिले चतरा में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपायुक्त रवि आनंद ने विकसित भारत के साथ विकसित चतरा के संकल्प को साकार किए जाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि
2: आज का दिन भारत के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी

0: लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया।
1: स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों का अवसर नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का भी स्मरण है।
0: विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक जनप्रतिनिधि और अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: पीएम जनमन के अंतर्गत 715 पीपीटीजी लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया। अब वो आवास योजना के अंतर्गत भी हजारों लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे,
0: कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, प्रत्येक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, किसानों की आय एवं उत्पादकता बढ़े, युवाओं को कौशल एवं रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़े, पर्यावरण एवं जल संरक्षण जन आंदोलन बने, प्रशासन पारदर्शी संवेदनशील जवाबदेह और जन केंद्रित बने। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए संविधान का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और चतरा को झारखंड के अग्रणी जिले में स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर फल्गु नदी के चतरा स्थित उद्गम स्थल को पुनर्जीवन देने को मंजूरी दी है, जिसमें नदी के पर्यावरणीय संकट को दूर किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर चतरा जिले में वन पट्टों का वितरण किया गया। वहीं ग्राम सभाओं के माध्यम से चयनित योजनाओं को DMFT की राशि से पूरा करने की घोषणा करते हुए उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि
3: जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहा जाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस क्षेत्र का भी हम लोग विकास अच्छे से करेंगे। जो भी योजनाएं हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त होगी उसको DMFT मद से हम लोग सैंक्शन करेंगे और जल्द से जल्द उनको धरातल पे उतारेंगे।
2: कृषि विज्ञान केंद्र चतरा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जिले में घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों और आम लोगों को गाजर घास के दुष्प्रभाव और नियंत्रण के प्रति जागरूक किया गया। इधर चतरा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। चतरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के मादक पदार्थों के पकड़े जाने पर जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि
4: बिहार के रास्ते होकर बगरा मोड़ होते हुए, जो कि हम लोग के चतरा जिला अंतर्गत पड़ता है, पंजाब में अफीम की तस्करी ट्रक के माध्यम से भारी पैमाने में की जानी थी। रांची के जो देवड़ी मंदिर के पास में बुंडू तमाड़ एरिया है, वहां से इन्होंने ट्रक में 85 बोरा डोडा लोड किया था और पंजाब और हरियाणा के राज्यों में इनकी पूर्ति की जाती थी और वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में दे देते थे जो छोटे छोटे लेवल पे सप्लाई करता था।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में चतरा जिला राज्य में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। जिले के 22,556 किसानों ने अब तक बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया है। वहीं 25,460 किसानों ने इसके लिए आवेदन दिया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
5: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बिहार और झारखंड के युवा साथियों कैसे हैं? आ गईनी एक बार फिर से ये कार्यक्रम लेके अहम बानी राजेश। हाँ, समझ आ गईल, बात हुई, जम के बात हुई और कोना पर बात हुई, ये थोड़ा देर में पता चली। आप सब युवाओं के करियर के लिए करियर की बातें हुई बुनियाद कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो

0: हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर हाँ आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। एक साथी ने जंदाहा वैशाली से हमें लिखा है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद। जी हाँ, अभी अभी इन्होंने इंटरमीडिएट पास आउट किया है बायोलॉजी के साथ और अपने लिए एक अच्छे कोर्स की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तक आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारियां देते मैं फॉलो नहीं कर पाया, कृपया उसे एक बार फिर से बता दिया जाए। इसके अलावे भागलपुर से, पूर्णिया से, बक्सर से और भी बहुत जगह से फोन कॉल आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का यह निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एजुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं।

0: हैं, सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121 0051, 1800121 0051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने तीन नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसके प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121 0051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है, और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद, जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह के सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे, उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पे भी जाएं और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
0: मजा आ गया, मजा आ गई लवनीश जी, वाह बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया, लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही। यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं। अगर हमारा बेटा भी हो तो हम

0: चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
1: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
0: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
1: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहां भी रेफर करते हैं और वहां जाके वो जॉब करते हैं।
0: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
1: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
0: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051 1800 121 0051 और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है, जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की और नंबर वही 1800 121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आ जाइए सुनते हैं एक ही फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ

0: हेमलता और जसपाल सिंह के गए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आ जाइए, हम सुनते हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद जो कि रांची के हैं, उनसे ली गई भेंटवार्ता। विषय है हम भूलने क्यों लग गए। इनसे बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, जब उम्र बढ़ती है तो याद रखने की क्षमता पर असर होने लगता है। बढ़ती उम्र में तन और मन दोनों स्तर पर बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ नया करने या सीखने या याद रखने में अधिक समय हमें लग जाता है, या हम याद नहीं कर पाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लग जाते हैं। जैसे हमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहीं और रख दिया, कागजात कहीं रख कर हम भूल गए और फिर उसे खोजने लग जाते हैं। यानी चीजें रख कर भूल जाने या उन्हें खो देने की घटनाएं अक्सर बढ़ने लग जाती है। देखा जाए तो ये लक्षण उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, परंतु अब कम उम्र के युवा में भी भूलने के लक्षण तेजी से दिखलाई पड़ने लगे हैं। जब याददाश्त कमजोर होने लगती है तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो हम भूलने क्यों लग जा रहे हैं, क्या कारण है? एक समय था कि हमारे बुजुर्ग साथी भूलने लग जा रहे थे, आजकल कम उम्र के हमारे साथी भी भूलने के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हमारी जीवन शैली कितनी हद तक जिम्मेदार है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल इसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में क्यों बढ़ते जा रही है?
2: आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी जीवन शैली ही कहेंगे। ओल्ड एज में पहले भी लोगों में ये भूलने की प्रवृत्ति होती थी, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भूलने के साथ साथ उनके अदर फंक्शन जो है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम होगा या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो दिनचर्या के कार्य है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, किसी कार्य को करने में उनको कठिनाई होने लगती है, तो इसको हम लोग डिमेंशिया

0: कहते हैं, ये कॉमन है 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल्स के लॉस होने लगते हैं, और एक बार जो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि सेल्स कम होते जाते हैं। तो सेल्स कम है इसलिए हमें समझने के लिए कि भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, भूलने की शिकायत। यंग एज में जो भूलने की शिकायत है उसका मुख्य कारण एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो साथ उनको बहुत सारे कार्य उन्हें करना रहता है, तो उनमें बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसी दौरान वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसे एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता की कमी के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण कि वो फिट हो सके, हमारे ब्रेन में किसी कोने में याद के रूप में वो संग्रहित हो सके। तो बाद में जब हम लोग रिकॉल करते कि अरे ये काम तो मैंने किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो मुख्य कारण वही है कि वो एकाग्रता से उन्होंने नहीं किया था, उनके दिमाग में उस तरह तरह तरह की बातें चल रही थी और काम कुछ और कर रहे थे, तो वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे मैं तो ये भूल जा रहा हूं, मुझे भूलने की शिकायत हो रही है। लेकिन यंग एज में जनरली जो डिमेंशिया जो कहते हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ये 60 के ऊपर होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 40-45 साल में भी वो हो सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है, उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें होती है, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ भूलने की शिकायत हो रही है यंग एज में, तो मेनली उसमें एकाग्रता की कमी वो एक मुख्य कारण हो सकता है, और साथ ही साथ अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी आप कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो कार्य करते हैं उसे याद नहीं रख पाते, हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो भूल गए हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया, ये डिमेंशिया है नहीं एक्चुअली, ये फॉल्स है। तो ये एक कारण अभी जो है वो हो सकता है।
1: कभी कभी हमारे बुजुर्ग साथियों में ये होता है कि वो पुरानी चीजें तो याद रखते हैं लेकिन वर्तमान की चीजें, कोई उनसे मिल कर गया, उन्होंने क्या खाना खाया, वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
0: यस सर, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसे ही ये डिमेंशिया का प्राइमरी लक्षण है, जो रीसेंट इवेंट्स हैं उन्हें उसी में उनकी याददाश्त की कमी रहती है, क्योंकि सेल्स जो हैं, जैसे हमें हम कोई बात कैसे याद रखते हैं, हमें वो बात हमने सुनी, उसे ब्रेन में प्रोसेस किया और ब्रेन में कुछ कुछ वायरिंग सिनेप्स हम लोग बोलते हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण वो स्टोर रहता है माइंड में। अब क्योंकि ओल्ड एज हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स कम गए हैं, तो ये फंक्शन तो अब कम जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो रिसेंट जो काम कर रहे हैं एकाग्रता से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स कम है इसलिए वो सिनेप्स नहीं बन पा रहे, सिनेप्स नहीं बन रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो अगली बार जब वो करते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में वो स्टोर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं स्टोर है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है वो कम हो गए हैं इसके कारण से, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिमेंशिया का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक है और उन्हें रीसेंट चीजें याद नहीं रहती है, तो उन्हें तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? यदि किसी को भूलने की आदत हो गई, वो भूल जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी याददाश्त कमती जाएगी, या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है?
0: जनरली अभी तक जो कॉमन डिमेंशिया जो पाए जाते हैं उनका उपचार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसे रिवर्स बैक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2-3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10-12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज से, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
1: कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है जी। तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
0: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती

0: रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं। अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है, तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पे सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं, तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
1: डिमेंशिया और टेंशन, टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन अगर यंग एज से ही बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है।
1: तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं, तो एक समय में एक कार्य किया जाए।
0: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए, ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत रखना होगा, जिससे ये चीजें हम लोग डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, और यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आप इसका इलाज शुरू कीजिए, और कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें घर में आप रखते हैं तो एकाग्र मन से उस चीजें को रखिए। अपनी चश्मा और कागजात कहीं और रख दिया, छोटी छोटी चीजें को आप भूल जाते हैं, चाबी कहीं और रख दिया, और आप फिर परेशान होने लग जाते हैं। एकाग्र मन से रखेंगे, चित मन से रखेंगे तो चीज आपको सही जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात आज के लिए है कि आप अपने जीवन शैली को सुधारिए, यदि बुरी आदतें हैं आपके साथ उसको आप दूर कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सह प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, जब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: हम भूलने क्यों लग गए, इस विषय पर अभी आपने सुना रांची के डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे संजय कुमार लाल। इसी भेंटवार्ता के साथ कल्याणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं गंगा धाम इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, इंदिवर के बोल हैं, संगीत दिया है सपन जगमोहन ने।